Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: पुरानो विश्वासिलो भरपर्दो बेखा रत्न साक्य ज्यासल सुनचारी पसल छँदैछ नि।
1: प्रोप्राइटर वीरेन्द्र रत्न साक्य 011-620-51 9141-567-84 चौतारको पुरानो बजार कृष्ण मन्दिर सँगै

0: 2083 श्रावण 29 गते बिहान 7 बजे कक्षा सञ्चालन 2083 भदौ 1 गते देखि सम्पर्क नम्बर 011-26-342-011-62-04-42 98-41-43-49-72 98-512-00-642
1: You are listening to Hello FM 89.6 MHz.
2: 89.6 MHz.

0: पाजी थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि, तू कहाँ गुम हो जाती है? तू भी चलना हमारे साथ,
2: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
3: नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में। आई स्टे हियर, जस्ट मी।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल